गुड मॉर्निंग छत्रपती संभाजीनगर. उठा उठा उठा, सकाळ झाली आता आणि मंडे एन्जॉय करायची वेळ आलेली आहे. तुम्ही ड्यून गेले MGM 90.8 FM, आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे. और जो मन का डे नहीं होता है उसे ही मंडे कहा जाता है, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन इज कॉलिंग मंडे एज अ मंडे, स्ट्रेस वाला मंडे, और कैसा भी मंडे हो लोग अक्सर मंडे को ना तो पसंद नहीं करते. लेकिन एक बात याद रखिये, जब मंडे आता है उसके बाद फिर पूरा वीक शुरू होता है, उसके बाद ही फिर वीकेंड का सुकून मिलता है. तो इस वजह से मंडे का आगाज तो करना जरूरी है. तो आज का मंडे आपका होपफुली बहुत अच्छा रहे, यही मैं दुआ करूंगा. बाकी तो बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी और हसीन नगमों का साथ भी होगा. बिकॉज साथ है तो बात है. कुछ ही देर में लौटूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून.

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपनी सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM's College of Communication, Culture and Media ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।
3: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।

किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM। एक छोटा बच्चा है, नाम है आरव। वो रोज स्कूल जाते वक्त एक पेड़ के नीचे बैठता है अकेले चुपचाप। क्लास के कुछ बच्चे रोज उसका मजाक उड़ाते थे। तेरा बैग कितना पुराना है, तेरे जूते घिस गए। शुरू में आरव रोता था, उदास रहता था, लेकिन एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा हर बाग में कुछ कांटे होते हैं, लेकिन अगर तू हर दिन कांटों से ही उलझता रहेगा तो फूलों की खूबसूरती कभी देख नहीं पाएगा। बस उस दिन से आरव ने अपना ध्यान उन बच्चों की बातों से हटाकर पढ़ाई में लगा दिया। उसने एक भी जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मेहनत करता रहा। क्लास के आखिर में जब रिजल्ट आया तो वही आरव टॉप पर था, और जिन लोगों ने उसे गिराने की कोशिश की थी वो सब पीछे छूट गए थे। जिंदगी में बिना तो कुछ लोग हमेशा आपकी एनर्जी चूसेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, वो क्या कहते हैं ना, बदले में जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो इस मंडे अपने माइंड को साफ रखिए और उन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो सिर्फ शिकायत लेकर आते हैं, क्योंकि आपका समय और आपकी पॉजिटिविटी बहुत कीमती है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा और मंडे से नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिएगा। यही थी आज की मंडे वाली कहानी किस्सों का कारवां में। सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ किस्सों का कारवां विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है. Healthy life में health पर बात होती है. आजकल हम सब future secure करने की बात करते हैं. Car insurance, mobile insurance, health insurance सब कुछ लेना जरूरी है. लेकिन एक सवाल है, insurance लेने से पहले क्या हम अपनी health की assurance ले रहे हैं? समझे? कई बार हम सोचते health insurance है, tension नहीं लेने का फिर. लेकिन insurance hospital का bill कम कर सकता है, सेहत नहीं बना सकता. सेहत बनाती है रोज छोटी छोटी आदतें, जैसे समय पर सोना, थोड़ा वॉक करना, बैलेंस खाना खाना, पानी पीना और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना. सोचिए अगर गाड़ी को रोज बिना सर्विसिंग के चलाए तो इंश्योरेंस होने के बाद भी वो खराब तो होगी. हमारी बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है क्योंकि इमरजेंसी कभी पता कर नहीं आती. लेकिन उससे भी पहले अपने बॉडी का केयर करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर भी इमरजेंसी कभी पता कर नहीं आती. तो आज से एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, रोज अपनी सेहत के लिए कम से कम 30 मिनट जरूर निकाले, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस मुश्किल वक्त में काम आता है. लेकिन हेल्थ एश्योरेंस हर दिन आपके साथ रहता है. तो ये बात याद रखिए एंड हेल्दी रहिए, सुनते रहिए.

0: लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ वेल तो जिंदगी ऑल इज वेल। तो अपने साथ है एमजे यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से डॉक्टर मानसी मैम। तो मैम, आजकल हम देखते हैं कि यूथ के अंदर ये ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो उस बारे में बताइए।
1: आजकल का यूथ बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो गया है, उनको बहुत इजीली एक्सपोजर मिल रहा है कई सारी चीजों का। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं सोशल मीडिया, है ना, कि भाई दूसरे का फोटो अच्छा कैसे आ गया, मेरा नहीं आ रहा है, उनके वीडियो पे इतने लाइक्स आ गए, मेरे नहीं आ रहे, है ना। ये तो हो गया कंपैरिजन। तो ये जो कांस्टेंट कंपैरिजन हो रहा है आजकल के यूथ में, और मैं ये यूथ के मामले में ही सीमित नहीं रखना चाहूँगी, जैसे किसी वर्क प्लेस में कि भाई हम कंपैरिजन करते हैं कि इनकी सैलरी ज़्यादा है, उनकी कम है, इनका ऑफिस अच्छा है, इनका नहीं है। अब मैरिटल लाइफ में भी हम कंपैरिजन करते हैं कि इनका घर अच्छा है, हमारा नहीं है, इनका स्पाउस तो अच्छा है, हमारा लड़ते रहता है ना। तो हर चीज़ में कंपैरिजन। व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन आल्सो, कि उनका बच्चा फर्स्ट आ रहा है, हमारा बच्चा फर्स्ट नहीं आ रहा है। तो ये हर एक चीज़ में जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन शुरू हुआ है, एंड एस्पेशली Why we are talking about social media? क्योंकि social media की वजह से और ज़्यादा comparison focus में आ गया है। सब अपने DPs update करते हैं, status update करते हैं, फिर काफ़ी social media handles पे काफ़ी सारे वो है ना videos, photos share करता है। तो बहुत ही constant comparison अब लोगों का हो गया है। तो ये तो एक बात रही। Secondly, आजकल बहुत हाई लेवल ऑफ अनसर्टेंटी देखी जा रही है अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जॉब्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, है ना, सोशल आइडेंटिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ों में भी दिक्कतें आ रही हैं। और इसका कारण भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है ही, अनसर्टेंटी, क्योंकि हमें लगता है कि अरे उनको लंदन में जॉब मिल गई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पता नहीं हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारा अनसर्टेन हम ज़्यादा सोचने लग गए हैं ना, हम ओवरथिंक करने लग गए हैं। एक और है कि ये जो हमारे बार बार नोटिफिकेशंस हमको मिल रहे हैं फ़ोन पे या और सोशल मीडिया पे, उससे हमारे ब्रेन को कंटिन्यूस स्टिम्युलेशन मिल रहा है। तो बार बार वो अलर्ट मोड में जा रहा है, किसी का नोटिफिकेशन आता है कि ये कहीं वेकेशन करने गए हैं, और फिर हमारा है ना वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, फिर हम सोचते हैं पता नहीं मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ओवरथिंकिंग तो हो ही रही है, वो लूप तो क्रिएट हो ही रहा है, और फिर नेगेटिव थिंकिंग का भी लूप क्रिएट हो रहा है। तो मेरा सजेशन है कि सब लोग सोशल मीडिया से है ना थोड़ा बच कर रहें, और बहुत वाइजली इसका उपयोग करें आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ये कैसा एनहांस कर सकता है या ये अवेयरनेस कैसा ला सकता है, थोड़ा सा आपको वाइज होना पड़ेगा। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट।
0: तो यूथ में और थिंकिंग क्यों बढ़ रही है, रीज़न क्या है, ये अभी हमने जाना। सो दोस्तों, अगर आपके भी माइंड में आपके मेंटल हेल्थ के रिलेटेड या और थिंकिंग रिलेटेड कुछ सवाल हो, तो हमें DM कीजिएगा 9359320080 इस WhatsApp नंबर पर, और मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा।

0: लेट्स टॉक अबाउट फरमाइश, आपकी फरमाइश सराखों पर। यू आर लिस्निंग MCM 90.8 FM, आरजी अदनान आपके साथ है। और आज गाने की फरमाइश में बहुत ही फेवरेट गाना है भाई, और बहुत ही बढ़िया गाना है। एंड यार, ये गाना सुनने के बाद ना तो अपने आप एक मुस्कान चेहरे पर आ ही जाती है। एंड देखो, गाने की फरमाइश की है ऋषिकेश सुरडकर ने।
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: गुमनाम इस मूवी से गाना है। 1965 में ये मूवी आई थी, जिसने उस दौर के दर्शकों को हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। स्क्रीन पर महमूद साहब की गजब अदाकारी और आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना है। भला इस कॉम्बिनेशन का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इतना सुपर हिट ये कॉम्बिनेशन था, और महमूद साहब की जो कॉमेडी लाजवाब है भाई। अरे गाना हमें सिखाता है कि अगर दिल साफ हो तो रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए फिर बिना किसी देरी से फरमाइश पूरी करते हैं हम ये। और दोस्तों, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुँचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, 9359320080। हम एंजॉय की जगह हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले है, ये फरमाइश का सॉन्ग। स्टे ट्यून।
2: ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो

जान है तेरे ख्याला चंदान, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो

अपने शहर के रास्तों से अगर आपको चलना है तो इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब आपका पत्ता कटेगा पता ही नहीं चलेगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान, एंड शहर के रास्ते मौत के कुएं से कम नहीं हो चुके हैं। जहां पर इतने सारे गड्ढे हैं तो प्रशासन क्या कर रही थी, ते खड्डे बुजवण्याचं काम ते करत होते। आणि त्यांनी काय केलं, त्या खड्ड्यावर खडी टाकली, बारीक बारीक खडी, ज्या ज्या ठिकाणी खड्डे आहेत आपल्या शहरात त्या ठिकाणी खडी टाकली, मुरुम टाकलाय, आणि दोनच दिवसात ती खडी पूर्ण निघालेली आहे। तुम्ही जर बघितलं सिडको सिग्नल पशी सेवन हिल सिग्नल वर तीच परिस्थिती आहे, आणि शहरातील ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारे काम करायचं म्हणून केलेलं आहे ना खड्डे बुजवण्याचं, ते सर्व काम पुन्हा जैसे थे वाले सिच्युएशन पे आ चुका आहे। मुंडा नाका चौक हो, दूध डेरी चौक हो, ACP ऑफिस हो, महर्षी वाल्मीकि चौक, आकाशवाणी चौक, इन सभी जगहों पर ना तो सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, अगर कोई टू व्हीलर वहां से स्लिप हो जाए ना तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो सकता है इंसान। लेकिन इससे प्रशासन को क्या ही लेना देना है, उन्हें तो बस काम दिखाना है, कैसा भी काम हो, कितना भी घटिया काम क्यों ना हो, बस उनको दिखाना है कि हमने तो काम किया है। हम क्या कह रहे, हम काम नहीं करते, लेकिन काम कैसा किया है ये आपकी नजरों के सामने। तो प्रशासन, काम करना है तो अच्छे से कीजिए यार, इतनी आपसे दरख्वास्त है। खैर, अब ये काम कब कम्प्लीट होगा, पक्के तरीके से ये सब गड्ढे कब भरे जाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। बस इतना ही कहूंगा कि गाड़ियां जरा आराम से चलाइएगा, सेफ चलाइएगा, क्योंकि शहर के रास्ते रास्ते नहीं मौत का कुआं बन चुके हैं। स्टे ट्यून।

0: हम अक्सर कहते हैं कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जो उसके जाने के बाद भी लोगों के काम आ जाए और उसका नाम रहे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और अपने शहर के कुछ लोगों ने सच में कर दिखाया है। हाल ही में एक बात सामने आई है कि घाटी अस्पताल में सिर्फ एक ही दिन में 2 बुजुर्गों ने देहदान किया। खास बात यह है कि इस साल यहाँ बॉडी डोनेशन 27 तक पहुंच चुका है, कई बड़े हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा है। सोचिए, जिंदगी भर हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने के बाद भी एजुकेशन के लिए और इंसानियत के लिए सेवा देते रहते हैं, वो बस एक ही तरीके से बॉडी डोनेशन से। और अपना घाटी हॉस्पिटल मुंबई के जे हॉस्पिटल से आगे निकल चुका है। जे अस्पताल में बिना तो इतने बॉडी डोनेशन नहीं होते, यानी कि देहदान नहीं होते, जितने अपने घाटी अस्पताल में हो रहे हैं। देहदान करना सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए डॉक्टरों को बेहतर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट योगदान है। मेडिकल स्टूडेंट्स इन्हीं की वजह से पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और उन परिवारों को सलाम यार जिन्होंने ये फैसला लिया है। और कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून का दान जरूरी तो होता है और भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए देहदान भी जरूरी होता है। अगर हम जागरूक होंगे, जानकारी लेंगे और समाज के लिए कुछ करने का सोचेंगे तो शायद हमारे जाने के बाद भी हमारी पहचान किसी की मदद के रूप में जिंदा रहेगी। स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम BTech 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति संभाजीनगर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: 93.8 FM। किसी की खूबसूरती की तारीफ करनी है तो इस गाने से बेहतरीन गाना कोई हो ही नहीं सकता।
1: आफरी, आफरी, आफरी,
0: आफरी फारसी लैंग्वेज का लफ्ज है जिसका मतलब होता है वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। और इसी गाने में एक और लाइन आती है, तरशा यानी कि तराशा हुआ तुम्हारा जिस्म है, दिल कशु यानी कि अट्रैक्टिव, और दिल नश यानी कि दिल में उतरने वाला। और इस गाने में जिस तरीके से चेहरे की खूबसूरती को बयां किया है।

0: शादाब का मतलब होता है ताजगी और मेहताब होता है चांद, यानी कि तुम्हारा चेहरा जो है ना तो ताजगी भरा है और चांद से भी खूबसूरत है।
1: चेहरा जैसे तसव्वुर भी तस्वीर भी।
0: और तसव्वुर और तस्वीर यानी कि मेरी कल्पना में जो मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई थी ना, तो उस तस्वीर से भी खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है।
1: चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी।
0: और मेरा ख्वाब यानी कि मेरे सपने में जो मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, यानी कि उस सपने की हकीकत तुम्हारा चेहरा है।

इसका मतलब होता है कि तुम्हारा चेहरा जादुई, रहस्यमय और खूबसूरत है। परियों की कहानी या अलिफ लैला की कहानी से भी ज्यादा रहस्यमय और खूबसूरत तुम्हारा चेहरा है। इतने बेहतरीन लफ्जों में इस गाने में खूबसूरती को बयां किया है। तो अगर किसी की तारीफ करना है ना, तो गाना उसे जरूर भेजना।

0: ऑन MGM 90.8 FM।
1: किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, एक वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था STD PCO के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJ Adnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, #, आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूँ आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो, मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप झिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती है। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन देता है। भाई हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस सुन के ले यार तू। तो वही सुनने का काम मैं करता हूँ ना, आपका भाई, आपका दोस्त बनकर अदनान का वही काम है। सो बेझिझक कॉल कीजिएगा 8421247339 इस नंबर पर। नंबर फिर से एक बार सुनिए, 8421247339। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पर DM भी कर सकते हो, RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर। अब इंस्टा पर आ ही गए ना, तो वहां पर एक ग्रीन कलर का बटन है जिसको फॉलो बटन कहते हैं, तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो कर सके। वहां पर भी मैं आपको ना तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकूं। सो इतनी दरख्वास्त है कि फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूं कि सुकून के साथ सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM।

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Nanak morning show. Freshness light radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ अदनान आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है। मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। DM कीजिए का इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: खड़क।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763 67 9245 और 9665353515।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 8793047544 or visit mgmu.ac.in.
4: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology MGM University मध्ये मिळवा फ्यूचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी।
5: बीटेक इन कम्प्युटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेटा साइंस,
4: पीजी, एमटेक इन एआई एंड एमएल, एमटेक डेटा साइंस आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
5: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404 94299।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रिक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? Institute of Information and Communication Technology, MGM University मध्ये मिळवा Future Ready प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
4: B.Tech in Computer Science and Engineering, B.Tech in Artificial Intelligence and Machine Learning, B.Tech in Information Technology, B.Tech in Data Science,
5: PG, M.Tech in AI and ML, M.Tech Data Science and Information Technology मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर Diploma in Cyber Security and Digital Forensic.
4: Admissions open. For more information, call on 9404-94299.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM साथ है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।

0: हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
0: MGM 90.8 FM साथ है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

0: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
1: क्या चाहिए?
0: अरे भाई देर हो गई।
1: तो मैं क्या करूं?
0: कॉफी, कॉफी चाहिए।
1: कॉफी, कॉफी और मैं।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका सोमवार अच्छा रहा होगा। वैसे सोमवार को अक्सर लोग हफ्ते का सबसे व्यस्त दिन मानते हैं। वीकेंड की छुट्टियों के बाद फिर से काम, जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां हमारा इंतजार करती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सोमवार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका भी है। आज की शाम खुद को थोड़ा समय दीजिए, दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल आराम के निकालिए, अपनी पसंदीदा गाने सुनिए, परिवार के साथ बातें कीजिए या फिर एक कप चाय के साथ बस कुछ देर सुकून से बैठ जाइए। याद रखिए, पूरे हफ्ते की दिशा अक्सर सोमवार से ही तय होती है, इसलिए अगर आज कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर शाम हमें

नया नजरिया देती है और हर अगली सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। तो इस सोमवार की शाम को सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों के साथ बिताइए। छोटे छोटे कदम ही हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। फिलहाल इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं अगले शानदार गाने की ओर। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन MJ 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। नई उम्मीदों और नए जोश के साथ आपका स्वागत है इस खूबसूरत सोमवार में। अक्सर सोमवार का नाम सुनते ही कुछ लोगों को आलस महसूस होता है, लेकिन सच तो ये है कि सोमवार हमें एक नया मौका देता है अपने सपनों के करीब जाने का, कुछ नया सीखने का और खुद को पहले से बेहतर बनाने का। सोचिए अगर हर सोमवार को हम एक नई शुरुआत की तरह देखें तो पूरा हफ्ता कितना सकारात्मक हो सकता है। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन आपके हाथ में है। छोटी छोटी कोशिश, लगातार मेहनत और खुद पर भरोसा आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। याद रखिए, सफलता हमेशा बड़े कदमों से नहीं मिलती, कई बार रोजाना किए गए छोटे प्रयास ही बड़ी उपलब्धियों की नींव बनते हैं। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ इस हफ्ते का स्वागत करेंगे। अगर कोई चुनौती सामने आए तो उसे रुकावट नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझेंगे, क्योंकि हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाकर ही जाती है और जब आपका इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद आसान लगने लगते हैं। तो इस सोमवार को सिर्फ एक और दिन मत समझिए, इसे अपने सपनों की तरफ बढ़ने का पहला कदम बनाइए। मुस्कुराइए, पॉजिटिव हो जाइए, अपने गोल्स की तरफ ध्यान दीजिए और सुनते रहिए एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं,
1: तो एमसीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
3: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
4: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
5: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
4: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942 9.

0: सोमवार के इस सुहानी शाम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। दिन भर के काम, मीटिंग्स, पढ़ाई और भागदौड़ के बीच अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है तो वो है शाम के स्नैक्स का। शाम की हल्की फुल्की भूख और साथ में कुछ स्वादिष्ट खाने का मजा ही अलग होता है। कोई गर्मा गर्म पोहा पसंद करता है, कोई सैंडविच, तो किसी के लिए चाय और बिस्किट ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जैसे कि मैं। और अगर साथ में दोस्तों या परिवार की बातें हो तो ये छोटा सा ब्रेक और भी खास बन जाता है। लेकिन स्नैक का मतलब सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी होता है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने शाम के नाश्ते में कुछ हेल्दी विकल्प यानी ऑप्शन शामिल करने की, जैसे फल, स्प्राउट्स, मखाना, भुने हुए चने या ड्राई फ्रूट्स। ये आपको एनर्जी भी देंगे और पूरे हफ्ते एक्टिव भी बनाए रखेंगे। सोमवार की शुरुआत अगर थोड़ी व्यस्त रही हो तो ये स्नैक ब्रेक आपको रिफ्रेश होने का मौका देता है। कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, आराम से बैठिए और अपने पसंदीदा नाश्ते का आनंद लीजिए। बताइए आपका फेवरेट मंडे स्नैक वैसे है क्या? चाय के साथ समोसा, कॉफी के साथ कुकीज या फिर कुछ हेल्दी और लाइट, जो भी हो इस शाम को स्वाद और मुस्कान के साथ भर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स फिलहाल आप अपने स्नैक्स का मजा लीजिए एंड हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MGM 94.8 FM। साथ है तो बात है।
1: इंजीनियरिंग ची डिग्री है, पढ़ाता जॉब नहीं ना?
2: कारण थ्योरी तर सगळे शिकवतात पण इंडस्ट्रीला हवे असतात ऑटोमेशन साथीचे प्रैक्टिकल स्किल्स।
1: AI, मशीन लर्निंग, IoT हे तर ऑटोमेशन से अविभाज्य घटक आहेतच, पण याच बरोबर सेंसर टेक्नॉलॉजी, कंट्रोल सिस्टम आणि कंट्रोलर आवश्यक असतात ऑटोमेशन अप्लाय करायला। आणि इथेच आज अनिवार्य आहे इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग।
2: कॉलेज आणि इंडस्ट्री यांच्यातील गॅप कमी करण्यासाठी आम्ही सुरू केलंय UDICE,
1: MGM युनिव्हर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं। सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है। विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784।
3: कायद्याच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअर घडवायचे, मग MGM युनिव्हर्सिटी आहे तुमच्यासाठी सज्ज।
4: 12वी नंतर 5 वर्षांचा इंटिग्रेटेड BBA LLB आणि 15वी नंतर 3 वर्षांचा LLB हा पदवी प्रोग्राम निवडा। पदव्युत्तर शिक्षणासाठी LLM मध्ये क्रिमिनल तसेच कॉन्स्टिट्यूशन किंवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मध्ये 2 वर्षांचा तर बिझनेस लॉ मध्ये 1 वर्षाचा विशेष कोर्स उपलब्ध आहे। त्यासोबतच टॅक्सेशन आणि लेबर लॉ मध्ये करिअर ओरिएंटेड डिप्लोमा प्रोग्राम करण्याची सुवर्ण संधी मिळवा।
3: अधिक माहितीसाठी भेट द्या स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च MGM युनिव्हर्सिटी किंवा विजिट mgmu.ac.in।
5: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कैसे चल रहा है आपका सोमवार बाय द वे? वैसे अगर सोमवार को हफ्ते का सबसे हेक्टिक दिन कहा जाता है तो कुछ गलत नहीं कहते हैं, तो शायद ज़्यादातर लोग इसे सहमत भी होंगे। ऑफ कोर्स ना, वीकेंड की आरामदायक छुट्टियों के बाद जब अलार्म सुबह जल्दी बजता है तो मन कहता है बस थोड़ा और सो लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमें फिर से अपनी रफ्तार में ले आती है। ऑफिस की मीटिंग्स, कॉलेज की क्लासेस, नए टारगेट्स, ढेर सारे ईमेल्स और पूरे हफ्ते की प्लानिंग, सब कुछ सोमवार से ही तो शुरू होता है। कई बार ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन यही व्यस्तता हमें आगे बढ़ने का मौका भी देती है। सोमवार हमें याद दिलाता है कि हर नया सप्ताह अपने साथ नए अवसर, नई संभावनाएं लेकर आता है। अगर आपका दिन भी आज काफी भागदौड़ भरा रहा है तो अब थोड़ा खुद को रिलैक्स करने का समय है। गहरी सांस लीजिए, अपने पसंदीदा संगीत का आनंद उठाइए और खुद को शाबाशी दीजिए कि आपने हफ्ते की शुरुआत पूरे उत्साह के साथ की है। याद रखिए, व्यस्त दिन का मतलब ये नहीं कि आप थक जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने सपनों और लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सोमवार चाहे कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और हमारे साथ बने रहिए। ओनली ऑन एमजी 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

जो तुझको देखा आसमां में चांद था नहीं, कहीं पे छुप गया के कहता लगता नहीं। इससे हसीन मैंने देखा कहीं कुछ के लोग यूं ही लिख

0: सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। सोमवार का दिन अक्सर एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और अगर पिछले हफ्ते के कुछ काम अधूरे रह गए हैं तो आज का दिन उन्हें फिर से शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। हम सभी की टू डू लिस्ट है कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम बाद में कर लेंगे कहकर टाल देते हैं। कभी समय की कमी, कभी थकान तो कभी मन का न होना, लेकिन जितना हम इन कामों को टालते हैं उतना ही उनका बोझ हमारे दिमाग पर बढ़ता जाता है। तो क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लिया जाए, उन लंबी कामों की सूची बनाएं और एक एक करके उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करें। जरूरी नहीं कि आज सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अधूरे काम सिर्फ समय नहीं लेते, वो हमारी एनर्जी और ध्यान भी मांगते हैं। जैसे जैसे आप उन्हें पूरा करते हैं वैसे वैसे विश्वास बढ़ता है और ऑफ कोर्स मन हल्का महसूस करता है। आज की शाम खुद से पूछिए वो कौन से काम है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शायद किसी दोस्त को फोन करना, कोई जरूरी ईमेल भेजना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना या फिर अपने किसी सपने की दिशा में पहला कदम उठाना। आज का ये मंत्र है कि पेंडिंग वर्क को पॉज नहीं, रिज्यूम कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे पूरे हुए काम ही बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ अमेजिंग शानदार गाने ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो एमजीएम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरेबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
4: Nairashya, Becheni, Zopichi Samasya, Bheeti, Chirchit, Ata Manasik Azar, Lapoichi Nahit, Upchar Gya, Samadhan Shodha.
5: Dr. Amol Pathikar, Manas Upchar, Vyasan Mukti Tadnya.
4: Satachi Chinta, Ati Vichar Karne. भीती वाटने, धास्ती बसने, भास होने, घाबरने, संशय करने, शंका येणे, चिडचिडपणा, एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा करणे, मंत्रचाळेपणा, व्यसन रीता, लहान मुलांमधील व वृद्धांमधील मानसिक लक्षणे, वैवाहिक समस्या, या सर्व समस्यांवर उपचार आणि समाधान, समुपदेशन, व्यसन मुक्ती, पुरुष व महिला अंतरुग्ण सुविधा उपलब्ध, आजच भेट द्या
5: उत्कर्ष क्लिनिक, हर्सुल टी पॉइंट, एचपी पेट्रोल पंप शेजारी, जळगाव रोड, छत्रपती संभाजीनगर, अंतरुग्ण विभाग, दिशा हॉस्पिटल, समुपदेशन काउन्सिलिंग सेंटर, संत तुकाराम नाट्यगृहाच्या जवळ, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट ऑन 88889 2688।
6: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी।
7: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
6: पीजी, एमटेक इन एआय अँड एमएल, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये पीएचडी करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक।
7: ऍडमिशन्स ओपन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404942999।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। एक नई शाम और एक नए हफ्ते की शानदार शुरुआत के साथ आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है और यही बात हमारे पूरे हफ्ते पर भी लागू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं? इसका एक बड़ा कारण है सही प्लानिंग। जब हमें पता होता है कि पूरे हफ्ते में क्या करना है तो हमारा समय भी बचता है और परिणाम भी बेहतर मिलते हैं। इसलिए आज कुछ मिनट निकालिए और अपने आने वाले सप्ताह की एक छोटी सी योजना बनाइए। सबसे ज़रूरी कामों को पहले लिखिए, उनकी प्रायोरिटी को तय कीजिए और हर दिन के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए। ध्यान रखिए, प्लानिंग का मतलब सिर्फ कामों की लंबी सूची बनाना नहीं है, इसमें अपने आराम, परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालना भी शामिल है। एक बैलेंस वीक ही हमें बेहतर प्रेजेंटेशन और बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है तो हम कम तनाव महसूस करते हैं और अपने गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी सफलताओं में बदल जाती है। तो दोस्तों, इस हफ्ते को बस गुजरने मत दीजिए, इसे अपने हिसाब से डिज़ाइन कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, उन्हें छोटे कदमों में बांटिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। एंड ऑफ कोर्स याद रखिए, अ गुड वीक डजंट हैपन बाय चांस, इट हैपन्स बाय प्लानिंग। एंड ऑफ कोर्स सुनते रहिए MGM 90.85, साथ है तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं एमजी मैरीपोन एफएम और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। दिन भर की भागदौड़, कामकाज, मीटिंग्स, जिम्मेदारियां और छोटी बड़ी उपलब्धियों के साथ आज का दिन अब अलविदा कहने की तैयारी में है। हर सोमवार अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है, कुछ नए लक्ष्य, कुछ नई उम्मीदें और कुछ नए अवसर। और अब जब ये दिन खत्म होने जा रहा है तो ये समय है एक पल रुककर ये सोचने का कि आज आपने क्या सीखा, क्या हासिल किया और कल को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आज का दिन आपकी उम्मीदों के मुताबिक रहा तो खुद को बधाई दीजिए, और अगर कुछ काम अधूरे रह गए तो चिंता मत कीजिए, कल एक नया दिन आएगा और नई सुबह अपने साथ नई मौके लेकर आएंगी। इस शाम को सकारात्मक विचारों के साथ विदा कीजिए, दिन भर की थकान को पीछे छोड़ दीजिए, अपने मन को थोड़ा आराम दीजिए और आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि एक सफल सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है। दोस्तों, मुस्कुराते हुए कहिए गुड बाय मंडे और स्वागत कीजिए एक नई ऊर्जा, नए उत्साह और नए सपनों से भरे मंगलवार का। फिलहाल आप कहीं मत जाइए, लेकिन मैं फिलहाल जा रही हूँ, आपसे इजाजत ले रही हूँ। स्टेडियम टाइम्स में 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: एडमिशन ओपन एमजीएम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर एचएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईओटी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस एनसिक्सिड को छत्रपति संभाजीनगर।
2: पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
4: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
4: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
3: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

म्हणून केलेलं आहे ना खड्डे बुजवण्याचं, ते सर्व काम पुन्हा जैसे थे वाले सिच्युएशन पे आ चुका आहे. मोंडा नाका चौक हो, दूध डेअरी चौक हो, एसीपी ऑफिस हो, महर्षी वाल्मीकि चौक, आकाशवाणी चौक, इन सभी जगहों पर ना तो सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो, अगर कोई टू व्हीलर वहां से स्लिप हो जाए ना तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो सकता है इंसान. लेकिन इससे प्रशासन को क्या ही लेना देना है, उन्हें तो बस काम दिखाना है, कैसा भी काम हो, कितना भी घटिया काम क्यों ना हो, और बस उनको दिखाना है कि हमने तो काम किया है. हम क्या कह रहे हैं, हम काम नहीं करते, लेकिन काम कैसा किया है ये आपकी नजरों के सामने. तो प्रशासन काम करना है तो अच्छे से कीजिए यार, इतनी आपसे दरख्वास्त है. खैर अब ये काम कब कम्प्लीट होगा, पक्के तरीके से ये सब गड्ढे कब भरे जाएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जानता है. बस इतना ही कहूंगा कि गाड़ियां जरा आराम से चलाइएगा, सेफ चलाइएगा, क्योंकि शहर के रास्ते रास्ते नहीं मौत का कुआं बन चुके हैं. स्टे ट्यून्ड.

हम अक्सर कहते हैं कि इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जो उसके जाने के बाद भी लोगों के काम आ जाए और उसका नाम रहे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और अपने शहर के कुछ लोगों ने सच में कर दिखाया है। हाल ही में एक बात सामने आई है कि घाटी अस्पताल में सिर्फ एक ही दिन में 2 बुजुर्गों ने देहदान किया। खास बात यह है कि इस साल यहाँ बॉडी डोनेशन 27 तक पहुँच चुका है, कई बड़े हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा है। सोचिए, जिंदगी भर हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने के बाद भी एजुकेशन के लिए और इंसानियत के लिए सेवा देते रहते हैं, वो बस एक ही तरीके से बॉडी डोनेशन से। और अपना घाटी हॉस्पिटल मुंबई के JJ हॉस्पिटल से आगे निकल चुका है। JJ अस्पताल में बिना तो इतने बॉडी डोनेशन नहीं होते, यानी कि देहदान नहीं होते, जितने अपने घाटी अस्पताल में हो रहे हैं। देहदान करना सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए डॉक्टरों को बेहतर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट योगदान है। मेडिकल स्टूडेंट्स इन्हीं की वजह से पढ़ाई करते हैं और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। और उन परिवारों को सलाम यार जिन्होंने फैसला लिया है। और कभी कभी किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून का दान जरूरी तो होता है और भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए देहदान भी जरूरी होता है। अगर हम जागरूक होंगे, जानकारी लेंगे और समाज के लिए कुछ करने का सोचेंगे तो शायद हमारे जाने के बाद भी हमारी पहचान किसी की मदद के रूप में जिंदा रहेगी। स्टे ट्यून्ड।

0: लर्नर्स इन इंग्लिश, एमए इंग्लिश, एमए मराठी, एमए हिंदी, एमए उर्दू, एमए संस्कृत, पीजी डिप्लोमा इन अरबिक, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन।
1: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763679245 और 9665353515।
2: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: तुझे सुन,
1: हर दिल की आवाज बने।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
3: ये दूरियां,
1: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
3: हम राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां।
4: अरे देख रहे हैं
5: तो देखने दो,
4: जल भी रहे हैं।
5: अरे तो जल ले तो,
4: खुली सड़क है बाबा।
5: तो क्या हुआ पाई?
4: हाँ तो हट जाए
5: हो जाए।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।
2: साथ है तो बात है।